को बनज करे, रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौड़ियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौड़ियां तो। कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु हो जहरी कहावई। जहरी कहाए पुन कौड़ा को बनज करे, पंच प्रवान में पत सटा घटावे। की वेखिया फिर ओई मैले कुचैले कपड़े पाए, ते थां थां ते होका देंदा फिरदा, ते कौडियां नाल फिर व्यापार शुरू हो गया। इतना हीरियां दा उच्चा व्यापारी हो के ते जिथों व्यापार शुरू कीता सी ऐसा धक्का लगा कि जिथों व्यापार शुरू कीता सी उथों फिर शुरू होया। लोग हसदे ने, मजाक उड़ांदे ने, कर्जे देण वाले सिर ते खड़े हो जांदे ने, लैण वाले भी। गुरु की साध संगत ओ मुसीबत विच फस जांदा है बंदा। लोग कहंदे नहीं आखिर तू कीता की। भाई साहब जी अपनी गल ते आउंदे हन, वचन कर दें

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावई। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा। आ थोड़े दिन ही होए हाय, मैं एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालियां ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर, कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असीं ओदा ही जाप करना है ना। एक बारी प्यार नाल बोलिए ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते नु पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नु बड़ा सावधान होना पैंदा, जिवें पति विरता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सौरे नु भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नु दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नु देंदी है, वो किसे दूजे नु नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारियां दा कर, पर अपनी जड़ नु ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साई बाबे नू मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिखी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साथ संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे ता पल्ला पकड़ाए, नहीं तां सी सिख तां छड़ जांदे आ गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे ने,

मेरे प्यारे, ओ माई बिलव्ड माइंड, कम होम एंड मीट द गुरु. सो द क्वेश्चन इज वेयर इज द गुरु, एंड गुरु सेज इन दिस लाइन, कर वसै हरे, ही रिजाइड्स इन योर ओन होम. So Guru is indicating towards our body, that Guru resides in our body. So he is asking the mind to come back and let's meet the Guru, which is in your own home.

सचमाचे साजर है सब ससमा मेरे कह रहा प्रभु राम नाम तो हमें सुना दे प्रच जाए नाम कौम पंथर पाए जुगन जुगो चली चला उपान के संजाल है आजा तू बिले आप नमन में रखिया कल में बेस धर्मवान आंख दायले बया वीर बसले कपड़े पहले

ठकुरा ने चार ताकी खोल दी, आखन लगे दिलफरोश आज कुछ कीमत कट की थी है, कुछ मुल कटाया ही या कल वाला ही है। आखन लगा जी क्योंकि जिन्स भी हुई है, पदार्थ भी हुई है, वस्तु भी हुई है, इसलिए मुल भी रखा है। लेकिन सतगुरु कहने लगे लेकिन का क्या मतलब, कुछ ये रू रहत है। आखन लगा हां जी एनी है, जेडी ओदी अवस्था है, जेडी ओदी हालत है, उसने आप आखी कहन लगा महबूबा दे कूचे अंदर मैं दिल वेचन जल था जागा हक मुल।

प्रज्वल राग सुही शब्द भी सुही कीर्तन भी सेव सुही भी शब्द है लाल रावया कमन गतिरी सखी बतावो मुझे नदी

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसलिए आख्या, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जे खिंचे पै जा। जिस वेले उसने अपने आप नू सग कहा, कुत्ता के आखन लगा कि होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हां। नंद लाल ते सुन ले तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नू इन्ने प्यारे होंदे ने कि छेज ते चढ़ जांदे। ओ बाबा मैनू हाली ए अवसर प्राप्त नहीं होया, ए मौका नहीं मिले अपने गुरु गोविंद सिंह जी दी छेज ते बैजमा। नंद लाल आगरा ते बेंत पदार्थ सन तेरे खान पीन वास्ते, इत्थे की मिलता है, इत्थे की मिलता है। ते नंद लाल ने बड़े सुरूर विच आके, बड़े वजित विच आके

मैं पूछे तेनू इत खाण वास्ते की मिलता है। नंद लाल बड़े सरसारी विच कहण लगा, सुनो सुनो भाई, सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी वास्ते जिस वेले प्रशादा आंदा है, थाल पोस के सेवादार बड़े एहतियात नाल, बड़ी परहेजगारी नाल और बड़ी सावधानी नाल लियांदा ना, ते मालक पलंग ते बैठ के उसनू छकदे ने, छकदे ने, ते फिर तू की करना है? आखन लगा, जी मैं नींद ला के तले बैठ जांदा हां, उन्हां दे जोड़े विच बैठ जांदा हां, मंजे दे पलंग दे कोल बैठ जांदा हां। सतगुरु बड़ी तबीयत नाल शेर होके आगा के प्रशादा छकदे ने, मैं सच्चे पातशाह दे मुखारविंद वल नूं वेंदा रहिंदा हां, तकदा रहिंदा, नींद नाल तकदा, ढिड भर के तकदा हां कि सतगुरु प्रशादा पै छकदे ने। जदों छक के सेवादार जल लिआंदा है चूल्हा करन वास्ते, परोली करन वास्ते, ते सच्चे पातशाह चूल्हा करके पानी धरती ते सुटदे हन, उस वेले उन्हां दे दंदा नूं लगे हुए रेजे भोरे धरती ते डिग पैंदे हन। मैं भज के उठ चुकना हां, यह मेरी खुराक है, मैं किसी होर नूं चुकण नहीं दिंदा। खुराक सुन ली, मैं वो रेजे धरती ते पए हुए बड़े इतमीनान नाल, बड़े प्यार नाल छकदा हां और तृप्त फिरदा हां, अगा के रहिंदा हां, हर वेले प्रसन्न हां, ते ए मेरी खुराक है, ए मेनू बख्शिश, ए मेनू रहमत उदो होई है जदों मैं आख्या सी कि लै लो दिल, ते मैं आख्या सी जग निगाहे जां फजाइश बस बबद दरकार मां। उस दिन तो सुरूर है, उस दिन तो मस्ती है, उस दिन तो खेड़ा है, उस

मैं तेरे दरदा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सब

अनक जन्म बीती अन परमाई, अनक जन्म बीती अन परमाई, कर वासना देवे दुत्तर माई।

0: कदम चढ़ाओ, बिन्नी रंजन मचाओ,
1: श्री कृष्ण का गुण विचार, नदी का गंगा पार, चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर चक्

हर नाम निदान है, गुरमुख पाया जाए तन मन शीतल हो, शीतल हो, हर हर नाम निदान है।

पंडिया पंडो में दोस्ती पंडो चले रहा है पंडमुआ पंडालिया पंडे बंदा स्वाक मंदा के राजा पंडो ही पंडो ये पंडे बाई ना कोई ना पंडे बाहर कुछ जा सोए कि

राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेकां लोक गीतां दियां धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सुपेरे दी बीन उते इस राग दियां मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सुपेरे दी बीन चों जदों सारंग दी धुन निकलदी है तां सप मस्त होके नच उठदा है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जांदा है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द दी महानता दा रख्या है। ए पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए किछ हथों दे नानक राहो पछाणे से, इसका उपदेश इसे राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगते हैं। गंधार अते धैवत वर्जित हैं। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग विच पहले शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर परमजीत सिंह जी। शब्द दी आरंभिक तुक जप मन जगन्नाथ जगदीशरो अते दूसरे शब्द नूं गायन कर रहे हैं भाई दिलबाग सिंह भाई गुलबाग सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है हर हर संत जना की जीवन। सरवण करो पहला शब्द जप मन जगन्नाथ जगदीशरो।

गुरु सच्चा है, दुनिया नु सच दी रोशनी दे, गुरु दे दरबार विच कूड़े दी कोई थां उथे सच्चे ही सच ने। सच्चा गुरु सच दी तकड़ी तोल ले, किसे दी रैत नहीं, फिर मेहरवान भी साचा साहेब साध मेहरो। सच्चा भी है ते मेहरबान, सदा मेहर। जिस तरह माता पिता दी सारिया बच्चिया ते मेहर है, माता पिता दे मन च किसे बच्चे दे मुतलक भी बुरियाई, माता पिता दी ए हर समय कोशिश होंदी है कि साडे बच्चे सुखी है। ए संत मित्र उस वाहिगुरु दी उस्तत कर करनी बनदी, जिस वाहिगुरु ने जिन कन की ते अखी नाक जिन जेबा दित्ती बोले था एडिया अमल वस्तु दित्ती, ओदी उस्तत कर, ओदी हमेशा सिफत। बंदे को कुछ मिल जाए असी ओदा धन्नवाद कर, ओदा थैंक्स अदा कर। डॉक्टर साहब अख विच मुफ्त दवाई पा देवे उसदी असी रीढ़ी हो जाए, मुफ्त फीस कोई नहीं दे। साडे मन विच उसका कितना सत्कार बने, पर हजूर फरमाउंदे ने जिस डॉक्टर ने मुफ्त दवाई पा दिती तेरी अख विच ओदा तू शुकराना करदा है, पर जिस मालिक ने तेनू मुफ्त अखां दित्तियां ने ओदा भी शुकराना करदा है, ओदी भी सिफत। कीर्तन सिफत, कीर्तन कीर्त प्रभ की गाव मेरी रस्म। आप सारे मालिक की सिफत ही जुड़े, सिफत करन वाला या सुनन वाला उन्हों मिलिया की हजूर फरमाउंदे ने जिसनों बख्शे सिफत सालाहा नानक पातशाही पातशाह। ओ पातशाह प्रभ की उस्तत करो, संत मीत सावधान उस्तत तो तुहाडे हुक्म अनुसार सेवक गुरबाणी का कीर्तन कर। अगली पंक्ति साहबाने श्रोतियां वास्ते फरमाई है कि सावधान, चौकड़े मार के बैठिए ते मन एकाग्र, तुरदा तुरदा पानी एक थां ते खड़ा हो जाए ना ओदे विचों मुंह दिसण लग जाए, चलदा पानी खड़ो जाए शीशे दा कम दिन, चलदा पानी खड़ो जाए विचों मुंह दिसदा प्यारी साध संगत, नाम बाणी कीर्तन दे सदके जे मन एकाग्र हो जाए उस मन दे अंदरों धन गुरु नानक पातशाह दिसदा। मन दा जुड़ना ही गुरु दे सारे साचा साहेब सदमे। माता पिता दी हर बच्चे वास्ते पसंद, जे मां किसे वेले बच्चे दी गलती नू वेख के कह देंदी है मर जा, हकीकत विच ओ मां जिहड़ी है बच्चे नू नहीं कहिंदी, ओदियां बुराइयां नू कहिंदी है।

सच में तुसी सारे पागल है जो अपने आप नू नाम नाल जो केड़े प्यार नाल रसना ने वाहिगुरू वाहिगुरू कहते सदा जपे रसन इस वास्ते मुड़ मुड़ वाहिगुरू वाहिगुरू कह या तो वाहिगुरू नाल प्यार पै जाए वो बड़ा मुश्किल है। साडा दुनियादारी नाल प्यार है, कम्मा नाल प्यार है, दुकाना नाल प्यार है, दोस्तां मित्रां नाल प्यार है, वाहिगुरू नाल तो प्यार पैंदा ही नहीं। या तो प्यार पै जाए या प्यार प्राप्त करने वास्ते वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप शुरू कर दे, या तो प्यार हो जाए या ओदे प्यार दी प्राप्ति वास्ते केड़ा साधन है ओदी याद। हर समय याद कर दे, आम कहावत है ना जिन्हू याद करिए ओ भी याद करे। इस वास्ते वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप हर समय करे। बच्चियां तू ही कराया कर, निके निके बच्चे माताओं का फर्ज है अमृत वेले उठा के, बच्चे उठते हैं उन्होंने आके सोने जुड़े करके सोने केसां दी संभाल करके बचे हो वाहिगुरू वाहिगुरू छको ता जो ए प्यार वधदा। जो जो प्यार वधदा जाएगा त्यों त्यों प्यारा नेड़े नेड़े आंदा जाएगा। अज तक लो प्यारा किस तरह बख्शिश पिया करता है ते इधर भाई जोगा सिंह दे अंदर जड़ी हौमे दा बीज सी हुण दरख्त बन गया। नाना चलिया मेरे तो बगैर गुरु दा काम, चल मना छेती पहुंच तुरदा तुरदा भाई जोगा सिंह हुशियारपुर पहुंच। शाम का टाइम हो गया, दीवा बत्ती जल गए। भाई जोगा सिंह ने सोचे सुनिया हुशियारपुर बड़ा सुंदर शहर है, चलो मना सैर ही करिए। जिस वेले मन कमजोर हो जाए ना उस वेले सैलानी बन जाए, शरीर नू बुखार हो जाए शरीर कमजोर होता जाए, कमजोर शरीर नू सर्दी भी छेती लगती है गर्मी भी छेती। इसे तरह जिस मन नू हौमे दा बुखार लग जाए वो मन कमजोर हो जाता है, उस मन दे उत्ते दुखां सुखां दा छेती असर होता, दुखां दे एक कमजोर मन दी निशान। कई इंसान जे सुख आ गए ता भी रब नू भुल जाए, एक कमजोरी है इंसान। ये कोई दुख का मोड़ आ गया ता भी रब तू नास्तक हो, जी मैं रोज गुरुद्वारे जांदा सी मैनु दुख क्यों मिले, आखो तेरी वाह गुरुद्वारे ही नहीं जा, एक कमजोरी। पर जिथे मन बलवान होवेगा वो तो अरदास करेगा केतिया दुख भूख सद मार भी दातरी दाते भी दात सिखती होता। जे सुख देता तुझे अरादी दुख भी घबरना नहीं, मन तैरने कला नहीं ले जा, ये मोड़ हैं। जी मोड़ ना है तो दूजा रस्ता नहीं मिलता, जीवन के अंदर भी मोड़ है। पर सावधानता वास्ते शब्द हर समय शब्द आ, मन कमजोर होया सैलानी बने नाल दे सिंह नू धर्मशाले आराम करने वास्ते कहा, आप भाई जोगा सिंह हुशियारपुर दियां गलियां बाजारां च कर दे। एक बाजार विचो लंघे आ चवारे ते तके आ की वेख्या, तेरी सास संगत फरीद जी ने लिखिया है फरीदा ए विस गंदला धरिया खंड गलेवा, वे ओदिया गंदला उते खंड गलेसी होई की तके आ वेसवा विच। मन कमजोर होया ऐसी मोया गया, किसे महापुरुष ने लिखिया हुशियारपुर विच पहुंच के होना सी हुशियार, पर एक वेसवा नू वेख के दित्ती सुरत में ख्याल आया चवारे ते चढ़ जा। पर नाल ही भाई जोगा सिंह ने सोचिया मन आनंदपुर साहब इथों नेड़े है, कोई वेगा ना होवे अजे नहीं जा, कोई समय ठहरे तो हुण भाई जोगा सिंह प्यारी सात संगत वेसवा दे चवारे ते जेड़ी पौड़ी सी पहली पौड़ी दे जिस वेले पैर रखे
ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੱਕੇ ਨਾਰ ਪਰ

परायी। पराई स्त्री वन लुक अंदर छाणी, याद रख अजराइल फरेश्ता तिल पीड़े कान। भाई जोगा सिंह दे कन्ने च आवाज पई, भाई जोगा सिंह ने झट जेड़ा पैर पौड़ी ते रखे असी हेठा कर लिया, पिछे मुड़ गए। मैनू तां कोई वेख नहीं। प्यारी सा संगत अद्धी रात, भाई जोगा सिंह दूसरी वेरी फेर आ, हुण कोई नहीं वेख। पर जिस वेले पौड़ी ते पैर रखे फिर कन्ना आवाज आई, केड़ी

भाई जो गांव में पहुंचे हजूर ने दूरू ही तक देखे प्यारी साध संगत जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता वो भाई जोगा सिंह आ गया आ जा जोगिया साढ़े कोल आ जा। भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे पर ए तो प्यार नाल पै बुला दे। भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंचे जोगा सिंह भाई आखां जी आया सोना सिख तू है सरदार बीबा कर नार परिवार नूं छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा। जोगा सिंह सोच मन मैं तां समझिया सी गुरु अंतरजामी जे अंतरजामी होंदा तां हुशियारपुर दी करतूत नूं जाणदा जे हुशियारपुर दी करतूत नूं जाणदा होंदा तां मैनूं सजा दे पर गुरु तो मेनू प्यार पिया कर जे गुरु अंतरजामी नहीं जे गुरु इथों दिया नहीं जानता तो मेरी दरगाह कि फड़ेगा 12 साल एवं गुरु की सेवा की आखो सेवा अंतरजामी सोचन लग सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है हुण अशरदक दे खाते च पिया पैंदा गुरु नू पता है शरदा तू हीण पिया होंदा हजूर ने कहा जोगिया मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने तकिया इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते नजरां नीवियां हजूर ने फिर किया जोगिया मेरे वल क्यों नहीं वेंदा तकदा फिर खांदा तीजी वेरी जिसले साहबा ने कहा जोगिया मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने जिसले कलगीधर पातशाह वल तकिया भाई जोगा सिंह हैरान हो गया कंबन लग गया की तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने तख्ते बहन वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देण वाला इको ही है। दोवे हथ रो पिया भाई जोगा सिंह पातशाह मैं पापी हां मैनू बख्श पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया जे संगत च बोल न कर। हजूर कहन लगे जो गया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अनिठ पिया करदा पर तू कहन लगा तेरे मन च फुरना बनिया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं मैं तो सब कुछ हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप ते तू कहना गुरु नू पता है नहीं तो भाई जोगा सिंह कह लगा महाराज ए भी चंगा होया आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर। कलगीधर पातशाह जी कह लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है मेरी अजमाइश की थी है। भाई जोगा सिंह चुप कर गया ते माद गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते क्या जो गया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा सुनाया पर मैं इम्तिहान च पूरा अजमायश पूरा पहले जामे सिख ने अजमाया बाबर दी जेल च अरदास की थी मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीट पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै तो जो गया मैं संगतां दा हुक्म सिर मत्थे रखे जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू दे घर जांदा चंदू मेरे ते फुल्लां दी वर्षा करदा पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मन के जिसले चंदू दे घर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बंदी रेत पाई पर मैं अजमाइश ही पूरा बिधि चंद ने मेनू अजमाया छेवे दुशाले लैके भजा जाता है पिछे बादशाह की फौज आ बिधि चंद ने छेवे पातशाह का ध्यान करके पठियारी दे बलदे पठ भी छाल मार हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ छेवे पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंघा ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो अधूर कहन लगे जो गया फिर बिधि चंद नू तत्ती वारी लगन दिती
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ

0: बादशाह मेनू बख्श, मैं भूल गया। हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदर हौमे अखा थानी पानी बन के बाहर नहीं निकल। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहन लग गया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं, भूल गया। रो रो के भाई जोगा सिंह का मन हौला फुल हो गया। अदूर कहन लगे जोगिया भूल गए हैं, हां पातशाह कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए हैं, ता जा तेरू बख्शिया आखो श्री राम। बस गल तो इतनी, भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी प्यार नाल पढ़ो।

0: इतिहास लिखे प्यारी सास संगत भाई गंगा सिंह ने दो लावा लिया ते दो नहीं।
1: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

होतना बारंबार जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा गुर सेवा ते पद कमाई तब ए मानस दे ही पाई मानस जन्म अमोल पायो वृथा काहे गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई सब ए मानस दे ही पाए इस दे को सिवरे देव सदे पज हर किसे पजो गोविंद भूल मत जाओ पजो गोविंद भूल मत जाओ मन चमका लाओ

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लै रे मन सारे पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना भजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार

या भीतर जो राम बस है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देवरिया गोविंद मिलन की ए तरी बरिया।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन किए नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत बोते जुगहारे हो, फिरत

कई जन्म पैकेट पतंगा, कई जन्म गाजर मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर्प होयो, कई जन्म पंखे सर्प होयो।